0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए,
1: यूं ही फिसल गए।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्यों जाए।